0: ये सांगां गुंसा चो वा छे साब दगा रंग यांसा सुंगु मेंस दी कर सबे आ जे मिमी शो रा शिगु गुए
1: आ शे मा शे होंग चंग ता द थिंग हुई ता जंग मेंस आ नि ये होंग चंग दा का ते जे हुए यो मा शबो
0: रा सामलो तो स्टोन दा उंगो होंग दो गे सा सुंग मेंस आ क्युम जे खरे आ जो गुंस दी आ दिप जे होंग दो गे फोगो संबो रे गुंस या हु युबे गबलो मा यो आ क्युम जे खरे 홍도기 준다가 등기 요마리 라이식도에 마라니게 사지소제 군시 교토부이나 제홍적에 라키민도 삼제 정식의 료도치리
1: 상계셰부디 금세 맨마시 이네 니 삼리 호스타비 사지소는 나키민도 셰민도고 나핑제 리에 맨마세 더도 니가 키우도고 상계 공시 겸토부이나 아든가 가게시 맵차부도고 타더 홍정게 마타레 나 총스제비 그제지니 용보도스 요스보
0: 제 예란 베트능 주체도와 아 장게 사스촌디 요마르바 마리 홍정게 란제베 촌디 김디 요마르바 디에 마리 장게 나냠 줄링고 허르바 제마레
1: 이니 가르유바 홍토탄의 홍청게 루치체 사샤 ये लाबे नागी मागा ग्यासे सिपचुदी गागजे सिरदा ये सुचो चेपिने दिते बोशी मसिने होंगचंग राला मे जेची बसी माता जवा मेबा दिलेरा सोसो समलो बागजे सिदो
0: जे मिमि रांगोने इजमेस खारशेयो आ ये रांचो ने मा रांगे बालाल किदे छेबा से होंगचलो किदे छेबा आ रांगे जेदवे रांगे जिने मिजु जे ओमारे ये रांचो 你们记我红城老二胖姐红城的公司行不行呢啊唐伯和让了卡地这里让了公司呢我忘记开门吧让给肯定是卡地家念吧哼特多假期洗漱上去让你们你老妈都我哼你也是他个让的姐妹一马上让个对哼当然三个月我是都我他的让给俺姐不要嘛的 你也让一个不要的